उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझे

ताली ताक धुम ताक ताली ताक धुम ताक धाला आम ताक धुम ताक ताली के नेतू ताक नाक धुम ताक नाक नाक धुम ताक नाक नाक जम तारी ता जग तारी ता जन जाने को कुदारी ता कुदारी के ने ताक धुम तारी ता जग तारी ता जन जाने को कुदारी ता कुदारी के ने जम तारी

हे सुनो वालों, मैं हूं आमी जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वो ही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहीद गुलजार। ये है यू आर उजाला रेडियो का पैगाम। हर एक को एक शुभ दिन, मुबारक दिन अर्ज है। वेलकम बैक।

लीजेंडरी ब्रॉडकास्टिंग यू आर उजाला रेडियो का पैगाम है शहीद गुलजार के जरिए कुछ मिक्स मैक्स सॉन्ग्स में वंस अगेन मैशअप।

जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। यू आर के फोन का नंबर है एम्स्टरडम में 020-409-0807। रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामकाज के वास्ते एक ओल्डी हो जाए प्रोग्राम में इस बार है। फिल्म का नाम सत्यमेव जयते। जानू मेरी जानू। जनता की आवाज, आप ही की आवाज। यू आर उजाला रेडियो।

दिल में हो तुम, दिल में हो तुम, आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, जानू मेरी जानू। फिल्म जीरो का एक और सिलेक्शन हम आपको सुनाने वाले हैं। वर्ल्डवाइड आप उजाला रेडियो को सुन रहे हैं, आप प्रोग्राम को सुनते रहना, सुनते ही जाना, आप हमें जहां से भी सुन रहे, जैसे हिंदुस्तान, सूरीनाम, हॉलैंड से या अफ्रीका से, अफ्रीका में कोई रहे हैं।

जुगाड़ का पैगाम है, प्रोग्राम को आप सुनते रहना, सुनते जाना। कुछ मिले जुले संगीत हम आपको सुनाने वाले हैं। पता नहीं है गीत को क्या हुआ, बीच में रुक गया, फिर भी हम आपको और भी अच्छे अच्छे सिलेक्शन सुनाने वाले हैं।

लीजिए इस बार प्रोग्राम में जगजीत सिंह की आवाज में ये सिलेक्शन। अरे प्यार मुझसे जो किया, जगजीत सिंह की आवाज।

प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगे, प्यार की आंधी में बह जाओगे। कुछ इस तरह सा सिलेक्शन आपने भी सुने हैं एक गजल जगजीत सिंह की आवाज में। मिले जुले संगीत आपके मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं युवाड़ उजाला वीडियो के जरिए। हर एक को एक शुभ दिन, मुबारक दिन। आप हमें जहां से सुन रहे हैं, सुनते रहना, सुनते ही जाना।

0: for music.
1: Enjoy the vibrations of Ujala Radio wherever you are. You are. You are.
2: The most sensational and
3: the best. The best.
1: जिसके लिए, जिसके लिए सबको छोड़ा, सबकी छोड़ दे रही, जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा, वो बेवफा किसी और की साजन की सहेली हो गई। फिल्म का नाम भी साजन की सहेली। आइए मिलकर सुनते हैं सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज़।

वो बेवफा, अरे बेवफा किसी और की साजन की सहेली हो गई। 1981 सन 1981 का फिल्म साजन की सहेली के सुलक्षणा आपने भी सुने हैं, सुलक्षणा पंडित और सुर का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज। घड़ी तरफ देखा जाए तो धीरे धीरे वक्त हो रहा है स्टूडियो से जाने के लिए, लेकिन जाने से पहले हम आपको कुछ और मैशअप सॉन्ग्स सुनाने वाले हैं। आइए दो चार सिलेक्शंस और हम आपको सुनाने वाले हैं। यू आर उजाला रेडियो का पैगाम है, हमारे सभी श्रोताओं को एक मुबारक दिन, एक शुभ दिन प्रकट की जा रहे हैं। आप हमें जिस हालात में भी आप है, जिस हालात से आप भी हमको सुन रहे हैं, फिर भी आप खुश रहे और सलामत रहे। अगर आप बीमार या तो लाचार है, आपसे यही कहूँगा, गेट वेल सून, जल्दी से ठीक हो जाना।

0: दे तू मेरे मोरे है गिरवा। हमारे सभी श्रोताओं के मध्य में कुछ मिले जुले संगीत पेश किए जा रहे हैं। यू आर उजाला रेडियो का पैगाम है। फोन का नंबर रेडियो के क्षेत्र पर 020-409-0807।
1: तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब।
0: यस सर, इट्स द लीडर इन ब्रॉडकास्टिंग। तू जाने है तो

मिले जुले संगीत आपके खिदमत में हमने पेश किए हैं, उम्मीद है आपको मन भाया। गजल आपको सुनाए, कुछ फिल्मी सिलेक्शंस और कुछ मैश अप सॉन्ग्स और रिमिक्सेस। युवा के सभी श्रोताओं को हम यही कहेंगे कि हमारा साथ देने के लिए, प्रोग्राम सुनने के लिए शुक्रिया और धन्यवाद। It's the rocking and most sensational leader in broadcasting. You are Ujala Radio.

यहाँ तक आपने सुने हैं आपका खादिम शहीद गुलजार को। अगर हमारे गुस्ताख मुखारबिन से कोई भी गलत शब्द फिसल गया हो तो आप हमें ना समझ जानकर माफ़ कर देना। इंशाल्लाह हम आपसे फिर मिलेंगे। प्रोग्राम को आप सुनते रहना, सुनते जाना। हमारे बाद में आपको और कौन खिदमत करने वाले हैं, कौन आपका सेवा करने वाले है। युवा के साथ जैसे कहा एक शुभ दिन, हम आपसे फिर मिलते हैं। शुभ वीकेंड आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं।

ये है उजालास कॉफी चाय मिडक शो। मैं हूँ लॉयड महावीर। एक हेले गुड मिडक अलमाल। आज है शुक्रवार 29 मई 29 मई। घड़ी की तरफ देखा जाए तो 11 मिनटों हो गए हैं 11 मिनटों ओवर 12 बाय यू आर उजाला रेडियो। सभी को हमारी तरफ से एक शुभ शाम पेश किया जा रहा है। फनाख मैंने कर अलेन फॉर या एक सादर अलेन फॉर अब वांद आनंद हमारे साथ ना देगा। Maar ik heb natuurlijk wel nieuws en tories uiteraard. En natuurlijk lekker muziek op Oujala. Oujala's middag. Koffie en chai show.

Heerlijk toch? Ujala Radio kis rebi haapne sun hai ye bachata remix pesh kiya gaya hai sun walo. उजाला रेडियो के जरिए हम आपको ये नमा सुनाने को जा रहे हैं, चुनरी चुनरी पेश किया जा रहे हैं उजाला रेडियो पर। आप सुन रहे हैं उजाला कॉफी चाय मिल्क शो।

मोका सिंह की आवाज में आपने सुने हैं जानी जमन पेश किया गया है रात के हम सफर उजाला से कॉफी चाय में तक शो यहां तक हमने पेश किए हैं सुनवालो। उम्मीद है कि आपको जरूर से पसंद आया होगा। एक वेंचुअल आलमन फैन वीकेंड, और वीकेंड में जो भी तो करिए मौज से करिए, नहीं तो ना करिए। आप सावधान रहे, खत फेस बहुत ढेर ना पिए। En na de hitte van deze week verscheen online een grap. Nederlanders hebben vier seizoenen. Winter, lente, zomer en... Waar is mijn paraplu? Vandaag voelen we veel mensen precies wat daarmee bedoeld wordt, toch? Oejala's Coffee Chai middagshow. Elke maandag tot met vrijdag tussen 12 en 1. Tussen 12 en 1. Alleen als het kunnen. Dit was Oejala's Midday Coffee Chai Show. Mij hoe Lloyd Mahabir. Waar je middag ook brengt, maak ruimte voor een glimlach, een goed gesprek en een paar minuten rust. Want juist die kleine momenten maken het vaak het, maak vaak het grootste verschil, toch? Milling Jaapse.

बीन कोटरावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुनवालो तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो दिस आई बिन कोटराव तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है। नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैथ उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, और अगला गीत फिल्म क्रिमिनल से आप सुनेंगे।

तुम मिले तो दिल खिले, तुम मिले दिल खिले, मुझे जीने को और क्या चाहिए। फिल्म क्रिमिनल का गीत और गीत के गाने वाले कुमार सानू एंड अलका जी, उजाला रेडियो पर।

मैंने सोचा ना था एक दिन आप हमको यूं मिल जाएंगे और राहों में फूल खिल जाएंगे। मैंने सोचा ना था। यस बॉस, फिल्म का नाम कुमार सानू एंड अलका जी, इन दोनों से आप सुने।

उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला बिंदनेल उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ।

का संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन। यू आर उजाला रेडियो के साथ यह संगीत का सफर यहीं समाप्त होता है। सुनने के लिए धन्यवाद और शुक्रिया।

0: live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

0: एहे उजाला रेडियो, यहां म्यूजिक कभी नहीं रुकता है, नहीं नोइट नॉन स्टॉप 24 घंटा लगातार तोर खातिर।
1: सुनावे लागे एक सुन

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

और अब तो ये जीना तेरे बिना एक सजा है यार, सजा है तेरे बिना, ये जीना सजा है तेरे बिना। जुनिता गांधी की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो पर।

जाना, जिंदगी से नहीं जाना, कभी नहीं जाना, नेवर। अब इतना सुंदर गीत के बाद मैं तो कहूंगा कि कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है और क्या सुनना है।

चांद जैसी लड़की। उदित नारायण की आवाज में गीत आप सुनी और फिल्म देवदास से निकाला हुआ। उजाला रेडियो पर अब लता जी। हाँ, लता जी के साथ श्री कुमार को आप सुनेंगे।

जिया जले रात भर धुआं चले। लता जी की आवाज साथ में एम जी श्री कुमार, फिल्म का नाम दिल से, और जावेद अली की आवाज में गीत सुनिए।

की रो रहा हूं मैं। या मोय है अंकित तिवारी, अंकित तिवारी की आवाज में फिल्म आशिकी 2 की सुन रहा है तू, सुन रहा है ना तू कि रो रहा हूं मैं। सुनने वालों, उजाला रेडियो का प्रोग्राम जुबिन नौतियाल की आवाज में अब गीत पेश है, सुनिए।

एंड तुझे कितना चाहे और हम, जुबिन नौटियाल की आवाज, फिल्म कबीर सिंह का गीत और उजाला रेडियो, और हम और आप

Nash King and Shasha तिरुपति से हाँ गीत को आप सुने फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड एंड अरिजीत सिंह

अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

हे सुन वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।